0: cat. Paving ways to redirect the fuel. Running back to carry the torch, but best to pass that. We don't need no hooks. Yeah, we don't need no hooks. We don't need no hooks. Yeah, and for the record, no flash.
1: रघु चौधरी के भेड़ा जितले हो शरद के रकम उके मिले की चाहिए। ला चौधरी ए बीच में केहू आई तो हमसे बुरा केहू न हुई।
2: बंदन तो हमार भतिया होए के रघुआ का तरफदारी करता हुआ।
1: हम तो हमेशा न्याय के साथ दे ला चचा।
2: होश में आवा कुंदन।